0: लोक चाँचरी
1: लोक चाँचरी उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाँचरी
0: लोक चाँचरी।

0: श्री भाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क।
1: लोक चाचरी
2: उज्यालो रेडियो नेटवर्क में तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाचरी।

0: लोक चाचरी
1: लोक चाचरी उज्यालो रेडियो नेटवर्क में तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाचरी
0: लोक चाचरी।

उज्यालो रेडियो नेटवर्क देयाठीची एफएम स्टेशन व अनलाइन पाखे हलिङ छकुन प्रसारण जचुङ चिताई नेपाबुखे प्राविधिक पासा संघर्ष विष्टलसी जी कुमार रंजितिया जजलपा दक्ली नापमा मुबुख बागमती प्रदेश सभाया राजनीति नुकथया नैतिक संकटे राप्रपा पाखे मन्त्री जुपी सोमेश्वर पद मुक्त यात राप्रपा केन्द्र पाखे संसद सचिवालय पौर दर्ता यात गोङ्गु वैशाख 12 गते थुकेचना चौथासँग छिटेटुङका झिङनीमा सुकुम्बासित श्री ढुङ्कुगु संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा यधापु संवाद मार्फत क्वाटुक समाधान माले त उत्पीडित कृषि लागु विकल्प वितमाग संज्ञा त भू ब्युपी बौद्धिक टेपु या त खोपरिङ रत्न पाखे छ्यापेल बागमती प्रदेश सभाया राजनीति नुकथया नैतिक संकटे लाग्दो सभाया मिग सतुगु मुन्ज्या थौ पेताक निम्ति स्थगित यामल मुख्यमन्त्री जुम किरण थापा मगर विश्वास मत क्यात सहल यातनाका सतुगु मुन्ज्या सुचन्तिका स्थगित यामल मुख्यमन्त्री थापा यत विश्वास मत बित खासन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुने लाफुत चैव ख अदालतको छङ्गुदो यलया उच्च अदालत हेटौडा इजलास थापा मगर यात मुख्य मन्त्री देकुगु विरूद्ध तगुरीटे विपक्ष नामे कारण देखाउ आदेश बिगुदो राप्रपा केन्द्र बागमती संसदीय दलीय नेता उद्धव थापाले चाहिँ सरकारे मोपी सोम मन्त्री गिरबहादुर तामाङ राजु विष्ट व राजेन्द्र प्रजापति पिन्त कारवाही यान पद मुक्त यात संसद सचिवालय पौदर्तयागुदो थुजौ अवस्था मुख्यमन्त्री थापाया सरकार लेङ्का तेत मागु बहुमत

0: ये निहान सिंह गुंगू सीट तक या निजी गाड़ी या तो वे वनी चैक उगु दो आपातकालीन गाड़ी या तो जग चैक करता होगा उगु सुनगे सुता गुतानी सिंह सनीलिया खुटार तक ये निंती कार जीप वो बहन या तो परीक्षण कथन यह की बिगु का सुरंग मार्ग सुरक्षा यूनिट या कथन आ या तो सीट को द्वितीय यंकी को व्यवस्था या गु दूसरा गुर्जु धारा दुगो फ्लाई ओवर न चैक उगु दो सुरंग दुने अपोले घोषिया पीगु किलोमीटर या गति यंके दई कथन कोच उगु दो ओवरटेक या गु वो गाड़ी डिके को या दई मको यशोनी पी निचा कचा दुगु वो प्रज्वलनशील हल जन तया हो गाड़ी तासा सुरंग मार्ग दुआने दई मको ठ्याम ठ्याम नि गुंगु अरबया लागते दिएको गु निगु फुटी खुइचा गु किलोमीटर ताहको गु उगु मु सुरुङ वंगु साउन एघार गते उले जाजु गु ख छवाय परीक्षण वो चालक ते अनुभव विश्लेषण दिपा मेमे गु गाडी यत्न छसी कथन दुत छेगु तयारी दो मध्यक सञ्चालन दिपा धासा गाडी सोया निश्चित शुल्क कोची गु धागु दो तल पुहाया पनतौगु कोदारी राजमार्ग लट्यलिपा निघनसिंह अस्थायी रूपमा च्याएको गुदो वंगु असार 31 गते निसिंह बन्द जचुङ लौ डिभिजन ज्याकु चरिकोट छिनु विकार नुगु ट्र्याक देखा च्याएको गु ख डाकलाङ सड़क तुनाउने व सड़क डिभिजन भोटे कोसिया इको लागार नुगु अस्थायी ट्र्याक दिएको गु ख आसिनुपाल चौक बार विषय निसे नेपाल चीन सीमा लागा लिपिङया बस पार्क तक गाड़ी गयो भने जिल्ला लोसङली लिपिङया पारी चेन्याको कन्टेनर थाना चौगु दो नो चागुली मुनिया त हलजल हे अफी धागु दो नो अझ पुअङ्क देखा अफुके त कुत अध्यक्षु भटिकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ त्यहाँ ठाउँ सुथानसिंह देनियङको सुपाछौं तोपिया बागमती व गण्डकी प्रदेश छुथासे कोशी कर्णाली व सुदूरपश्चिम छुथाले मधेस प्रदेश छथानिथा वा वगुदो मनसुनी फेस सक्रिय जचौली ठाउँ कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश पहाड़ी लगाया छथानिथा वा वै धागुदो बनिन कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली व पहाड़ी लगाया छुथासे नन्याना मलजुसिंह वा वै धागुदो सीधा कुरा प्रश्न विचार ठोख उज्यालो रेडियो नेटवर्क सनिगले चेसान मेगाहर्ज थौने नीति नेपाल भाषा बुख थनेको चाल चिनिताईले हाक्न नेपाल खबर जनगुए गुएजी दक्ले लिपा थौया मु बुख हाक्न छक बागमती प्रदेश सभा राजनीति नुक थया नैतिक संकटे राप्रपा पाखे मन्त्री जुपी समेष्ट पद मुक्त यात राप्रपा पाखे हे संसद सचिवालय पोट दत्त यात वंगु वैशाख 12 गते थुकेचना चौथा संस्कृतिका झिनीम सुकुम्बासित सिदुङको संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मोर्चा धापो संवाद मार्फत क्वाटको समाधान माले त पीड़ित त शिलागु विकल्प वित्त माग ओ संज्ञा त बुद्युकी बौद्धिक टेपुया त खोपिङ रत्न पाखिन छापेर नेपाल भाषा बुख छिस उज्यालो रेडियो नेटवर्क सनिकले छसान मेगा हर जिना पेया चिठी एफएम स्टेशन व अनलाइन पाखे हलिङको छ कोलन जना जिक जुल उज्यालो रेडियो नेटवर्क या मोबाइल एप्लिकेशन व उज्यालो अनलाइन डट कम ए ताजा खबर निम्न नाप बने फै नकतिनी नेनादिला नेपाल भाषा बुख
1: सर्पको टोकाईबाट बस्न खेतबारीको काम गर्दा विशेष ध्यान दियौं। रातको समयमा बत्ती बालेर मात्रै हिँड्ने गरौं। सम्भव भएसम्म भुइँमा नसुतौं। झुल लगाएर सुत्ने बानी गरौं।
2: जुत्ता लगाउनु अघि जुत्ता भित्र राम्रोसँग हेरौं। सम्भव भएसम्म घरका झ्याल ढोकामा जाली राखौं। वरपर घाँसपात र झारपात काटेर सफा राखौं। सर्पले टोकिहालेमा टोकेको ठाउँलाई चल्न नदी स्थिर राखौं। काट्ने चुस्ने र बाँध्ने नगरौं। बिरामीलाई उपचार हुन्छ आतिनु हुँदैन भन्ने खालको आत्मविश्वास कायम राख्न सहयोग गरौं। धामी झाँक्री र अरू घरेलु उपचारतिर नलागी जति सक्दो चाँडो अस्पताल वा सर्पदंश उपचार केन्द्र पुर्याउ।
3: सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध।

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
1: नेना चुना दिला लहना उज्यालो रेडियो नेटवर्क के सुनिगले चीशान मेगाहर्ज सीधा कुरा प्रश्न विचार
2: दिपाली पाकन छकल लस्कुसिया नचना उज्यालो रेडियो नेटवर्क के नेवाजा जो लहना ठों गुम्पुनी सापारु या च्यानु खोपे सलन शब्द निशे विके व्यंचोंगु तर पीड यह दिना हान छिद यह निशे सूर्यागु मचाते नागाचा नागिंचा प्याखा या तयारी वोकी चीची कथा वोगु समस्या उज्युगु समाधान यतकया खोपे वडा नम्बर पाँचे दुगु गोसा खल छिन्छेन दापा भजन खलय गुरु कृष्ण प्रसाद आचार्य दिशे खला बला यनचना वेकल से छिव नचुन यसरुसा जिमेको फेसबुक पेजे
3: धन्यवाद
2: खोपे अप किसान त दुर्गा दाई बुझाइए पिन किसान त म आज पनि त्वा चाहिँ थिचि कथन किसान जग मको थिचि कथन यो चाहिँ जात जाति पिन वर्ग पिन दु थाय न जुल मखला आछि आचाजु जुल मखला छि आचार्य का चै दि मखला
3: आचार्य र छ
2: छि आचाजु खला कि आचार्य
3: अछि हे नपा आचाजु हे जी थकि
2: अनि छि चाहिँ आचार्य र का ओ के बनुते सन्थे छै छोयु
3: सुधार था कि अच्छी बाजाफुंग नागरिकता काना जी सरकारी अफिसे वाना जी आना चाहिए सुधार था ची खेत जी कर्मचारी तो प्राय आता जो तिमर के कर सो थाला जी हमी तो ऐसे पंडित एक कर सो आता जो है ना इंतजार सुबह आचार्य हो ताहिरे उकान आचार्य तो कत्ता कत्ता तो पतिज लोगा अच्छी बाजाफुंग किसान आचार्य तला
2: आचार्य ने कहा सुबह आचार्य
3: आचार्य आचार्य
2: अरे उनकी तो समझौतन यह माला ले खास आचाजु खा
3: आचाजु खा
2: वास्तविक कर्माचार्य धाई खन्छ मखला
3: अछि सँग कर्माचार्य न तई आचाजु न तई अले अथवा आचार्य धाले चाहे छि चाहिँ प्रति खे ब्रन्त थिन ल मला अछि था प्राय छ न छि था ए यसो थम खोसे इ मला ए आचार्य हो र हेर्दा त नेवार जस्तो छ रे हो हामी नेवार हो तर हामी आचार्य नेवारमा पनि आचार्य हुन्छ र अछि बाया पिसो नेपाल छिन त्यास न अछि
2: छि न थ प्याखन नि
3: हजुर
2: प्याखन ए चाहिँ छु जातीय पिसा छिपनी आचाज पाइपिन पाखे जक या क्यों खला कि मे मे जात पाखे न कि यामसा याम याउ परिवार पि वसा छु
3: छु काजु थे छे जात भात है मरो म स्वय छु जात भात मरो छि इच्छा दपन छे व्यक्तिता तने चसन थ कि कलाकार रे अब
2: ए
3: इच्छा दपन जात भात थ थे व ए धैर्य चसन थ कि तने विभेद मया अ नपा छे यो चोन तने छि नेवार किसान परिवार यो चोन पति ल अथा कि जाने मध्यम वर्ग आपू कला मस्ते ने इंटरेस्ट दो जो तेने मध्यम वर्ग आपू मस्ते तेने कलाकार यंग तेने चेसन थे सो सो पति दा था कि तेने थो जात वो जात थम से नगा या मोब से नगा या मोट है पति तेने मोब जस्ते तेने चुन नवा दुर्गा नाच खे तेने अना
2: बनमाला जो
3: कमाला बनमाला ता दा वे कर पिसन नगा ये
2: फे जात हों से कर या मा ले दुनी
3: मगा
2: अब ठीक है मरो
3: मरो
2: क्योंकि अर्थव्यवस्थापन क्योंकि चाहे आप विभिन्न किस्म के खर्च व्यवस्थापन अर्थव्यवस्थापन दई मगला चिकुन तो खर्च दई अथवा चानु चाहिँ प्याखले या विभिन्न थासे बन बोले अनेक किसिम खर्च भई
3: हजुर
2: अब यो व्यवस्थापन गुप्त यन्त्रमा थौ नि
3: अछि चाहिँ सुर्खे छ सँग आफले छ के त्यो हामरु मला दफा भजन खलनन जुसान जने छ अले ठकिता जने छुइन त्यार छ छ खिन्छे दफा भजन खल जने भजन ता जने सुइपति ल अले छिरु थुपति प्याखन खेता जने बजेट त्याबिपति मख्त मला के जो छ सँग सुर्खे जने छ पासा फ्रे मिले जो अब पता पता छ सँग चन्दा चाहिँ मखु कि छ पासा फ्रे मु पसा पनि विजय कजु थुले जिन सदा थोयो बे वन सदा वयो बे 72 साले जब छ सुर्य आबले छ नि छ ए पिकायो थकि तने खर्च व्यापखं जस्तै नर
2: 72 साले भोखा बे तुमका पिके बोला
3: हजुर अ पखा बबले तने पखा बे अ पखा बबले छ सम पिकायो ल
2: पखा बबले छन पखा म बबले छ अ पुबले चाहिँ प्याम व भोखा बया चाहिँ पुक्क छेंछि दुला चोमले झन ठाकुरले चाहिँ छिप्छन प्याखमा पिकेको
3: मखला ओ ओ तामे छुदु रसा व्यवस्थापन छ सँग 72 साल याद को चाहिँ छि नेपाली से योजना यो त अपनि त ठक्क पखा बया बिल पखा बसन तने पखा बे रुंक बैसाख पखा बउ ल छुया साउन फटो खे छु बति थोप या हम पिया अले तक भित्र चाहिँ छि पता सहज जे रुंक ल पखा बोले पति
2: बैसाख पखा बउ बदौ तक जुले पखा सहज
3: सहज ल अले ओ टाइम चाहिँ छि पासा पनि सन जाने यंके मारी छि अथापले चाहिँ पखाबे न मन यो पशु पति ल मला अब फकैसे जने भाषा अप्ठ्यारो समय खे प्याखम पिखन है मखु थो समय खे चिसंग प्याखम यंकल हाल दसा भाषा बालै त्यहाँ जने पखाब बसान चिसंग আর্থিক রূপ ভুয় জুসান উবলে পিকায় ও টাইমে চেসম পিয়াহাম পিদা পিয়াহা বলে সুয়াওয়ে ছাথয়ে পিয়াহাম পিয়াম ছিউয়ে রগ খিছে থাব দাফা বজন নিয়াও রে গেট গ পিয়াহ হ্যাঁ
4: বয়া খপে উলমচি ছিন বুন উলমচি মনুষিত আলে ও সাপারু বলে গুম্পনি বলে উলমচি সলন স সমূহ পুচ দেই পিয়াহা পুচ দেই ছুয়ে পিয়াম ছিবি লগে তা ওলা
3: লগে এতনে দাফা বজন খলাফ ওয়ে নাগাচা জঙ্গলি কবানচা আলে লাখে
4: হপা মজবুলা
3: নগরপালিকা পত্র পত্রিকা
4: পুরস্কার
3: অন্যপতি ছুঁয়ে মবু
4: খোপে সাংস্কৃতিক নগর গাধাই অপ্যাশ বিদ্বান পেশন নেতা পেশন ও খোপে অন্তরাষ্ট্রীয় রূপে পর্যটক কেন্দ্র গাধাই নখ চখ বাজ নগর গাধাই হ্যাঁ তো মাকে তলা হবা বিতলা সুং সুং গালিলা স্থানীয় তহ নগরপালিকা ইয়াম খানি ইয়ান দুঠে চিকপিন তো মজা
3: বহাত্তর সালে ছিউপতি অনুপতি নীতি মারে নগরপালিকা জব চেনে জনপ্রতিনিধিত্ব চাল নি চুনাব জুল চৌহত্তর সাল চুনাব জু থেকে
4: উল্লে
3: ও টাইমে ওয়েক নীতি হল কি পিয়াখানি থে থাকাতে ইয়াও মূল্যাঙ্কন ইয়াও মূল্যাঙ্কন চেনে নগদ পুরস্কার বেউ সুসু চেনে উপস্থিত জুলা ওয়েক ইন্দান চেনে সহভাগিতা আদান চেনে নগদ বিতরণ ওয়েক অবলে নীতি দেখল আলে উসা চেনে ঘুলিং প্যাহাম প্যাহা
4: চৌদিন খরচ বর্ষ ইয়া তো
3: চেসন জুন নগরপালিকা নগর স্বরূপ পুরস্কার বিল নি ওয়ে ঠেভাখন জানে অ ঘুলিং প্যাহাম প্যাহা চৌদিন ভক্তপুরে অজিন থাকে নি খপে জানে বহত্তর সাল জানে ঝিউ ছতর প্যাওলা অগি হা চেনে একদম কমজোর প্যাওল মোলা আলে জব চেনে নগরপালিকা ছি সাপারে বলে প্যাহাম প্যাহ পিন্দা চেনে খরচা ব্যবস্থাপন নগর পুরস্কার ব্যবস্থাপন এটা উসা দেখি ছিউপতি সাংস্কৃতিক স্তরে ভাষা থাউপতি খান্দ অকুয়ে প্যাহান তো প্যাহ চৌন টালে টালে চেনে থৌ গছে অনুসার থৌ ক্ষমতা অনুসার নপা ছুছু প্যাহান দৌ অকিতা পুনর্জাগৃতি জেনে সৌদ আ ছিউপতি প্যাহ তো গুলিম প্যাহ খ ও জুন প্যাহাম প্যাহ কেউ শ্রেয় নগরপালিকা ঝি জনপ্রতিনিধি আলে ঝি নেপাল মজুর কিষান পার্টি এবং অগ্রজ
4: শুরু নেপাল মজুর কিষান পার্টি
3: খানি বিচার অন্যপতি সাংস্কৃতিক স্তর উত্থায়মাউপতি কলা সংস্কৃতি নেপাল জুন দৌ খিদা জগের নাইয়া মাউপতি ওয়ে কপি বিচার দৌল ওয়ে বিচার অনুসার ঝি টালে টালে নজানে ওয়েক খাতায় দিল আলে ও খায়াপতি উৎসাহ জুয় আলে থথ টালে নাপা ছু দৌ খালে সা এসা অছি পিকা মা তাই উকাদম পিয়াওপতি নো খান্দ
4: থন পাশ পিসা দিদ সুরেন্দ্র শিল্প কাজ নাগাচা নাগি চাই অর্থ ছু থোপ প্যাখো হিচে তো আর্থিক গোয়ালি স্থানীয় সরকার পাখে মোল্লা ঠোলা ছিঁ তাই দিদ তো নাগাচা নাগি চাই অর্থ ছু কাতাই সঙ্গে
3: নাগাচা নাগিন জানা আছে চেসন সুরখে তো রাধা কৃষ্ণ হে খ রাধা
4: কৃষ্ণ
3: নাগ নাগিনী খ মহু নাগ নাগিনী খ মহু রাধা কৃষ্ণ হে খ অবকিতা জানে চেসন চেসন নাগাচা রাইতে ছু অর্থ খং অমতা নাগাচা থাকলা ছু অর্থ খ নাগিনজা থাকলা ও চেসন মথু নাপা অছি নেনেউ ন চলন মরু মলা জব কলাপস জাউল নি কলাপস জানি জানে এ নাপা ছি থে দৌ চেসন ছাই অ মডে কেউ চেসম মানে কলার হাল সাল লিপা পুস্তা পিছন জানে চেতা ঠিকারি নাপা থে দেয়া যুন ছমসং ছিপসং বাস্তামায়া ছমসং বাস্তামায়া থো বাস্তাম ছমসং বাস্তামায়াও জু জুনে জিমসং জানে থনিও না চেতা দৌপতি জানে স্বয়ং খান চেতা দৌপতি প্যাখান তা চেসম লোহেম খান থো জানে ছমসং জু ধাইরে চেতা জানে থম মধ্যাকে লাগে চেসং তরবা পিন্দা বাজা পিন্দা জানে খতে চেসং থো প্যাখান শ্যা ও টাইমে প্যাখান শ্যা বলে জানে অশি অথত্তর বর্ষ দমাপতি তরবা তা চেসন প্যাখন লিখ ওয়েক পাখন চেসন শেখাও ওয়েক কি একদম দম ইয়ামপ্রি রোগী সোন নেপুর নেতাকির থাই বলে সোয়া সোয়ান ফাঁফা ইমাপতি শঙ্খ বাহাদুর কৈতি ধ্যামাপতি वेकलन छेता कुहे ग्वालिन उले थम्न शास्त्री नया जोसान चाहिँ वेकलन छेता दौपति प्याखन त बच्यो त के म ध्याव हिसाब चाहिँ उले कष्ट भग्यो जोसान वेकलन छेता स्योतारको
4: ए
3: ओ टाइम 72 साल है
4: वेक आ
3: वेक बितल
4: ए
3: वेक गने प्याखन सिंह 2 वर्ष ति लिपा वेक बितल
4: ए
3: वेका एकदमै उत्साह दमापति छमा कलाकार छ।
4: थम किरण खड्गी निवाजु चैतिदु यी इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका दु होला
3: हजुर
4: ओ समिति चाहिँ फुक्क प्याखमा पिखाउँ त्यो चाहिँ
3: व्यवस्थापन
4: यही अहिले नगरपालिका कि सरकार के सेवा काई होला
3: हजुर
4: त इनाबी घटना चाहिँ व्यवस्थापन यन्त्र अहिले न जुजु सिद्धी नरसिंह मल्ल सूर्यन्तको नाजा करिब पेसर पुलाङ काटी प्याखौँ आतक ज्ञान विचौँदु उलेन चाहिँ मध्येको ज्ञान चौँ थो इतिहास दु कार्तिक नाच प्रबन्ध समिति देखा पलिस्था यन्तौँदु छिप्पिङ अयौ छु समिति अयौ मल्ला समग्र खोपै तिन त कैचाना देख त समिति गु समिति चाहिँ फुकेस्त व्यवस्थापन यही गुहाली यही मल्ला मापिन त माउ ठासे चाहिँ किबी अयौ छु समिति मल्ला
3: अखपया सिलसिला अन्यपति छुयमर्ग थोसङ गुलिङ ख प्याखम पिका चौँ ख छि त्वालाङ त्वालाङ समूह मिले जु हरेक त्वाले आफ्नो प्रति अग्रज त मिले जुयो जुयो देख्द पति थकि चाहिँ छि काठमाडौँ पातनिया थियो जाने व्यवस्थापन समिति धाइरहेको छैन अन्यपति छुयमहरू छवे छुदहरू छ छेउ तान्त्रिक नाच नवदुर्गा नाच अकिहेर चाहिँ छौ व्यवस्थापन समिति धाइर्य चाहिँ गठन सञ्चालन चौँ दठेन चौँक वो व्यवस्थापन समिति नै नपायान दौपति म हो हालसाले देखाउठेन चौँक जिन्सेबले
4: गुम्पनी सापाहरूले उसले मछी प्याखमा त प्याउ नि खोपे
3: हजुर
4: बाजौँ त प्याखमा त प्याउ नि व्यवस्था यही छुँ चाहिँ मेरा निज मोर्खा खोपे नगरपालिका अब या माउ ख नि मकला छिप्पिनसँग स मतै उसलाई कि वेकअपसँग वा मच्याएको उसलाई कि कसै ख
3: अथवा
4: कि नपान चाहिँ चलिजाउँ खै जी काट घाटे
3: नेपाली चाहिँ ठो किसिमन चलेजो ल गठिया चले व्याचौँ ख अत्य अथेन्तो यहाँ व्याचौँ पति ल अहिले ठेक्दा चाहिँ छिसङ छिहु नगरपालिका पाखन चाहिँ अछिसङ थ्या मैला भत्ता व्यवस्थित चाहिँ वानेमाला व्यवस्थापन समिति हेराए चाहिँ म हो मलाई व्यवस्था या म छिसङ छिहु थासे चौँ पति थथ त्वाले चौँ थथ छिटिकाठौँ व्याचौँ पति जुन प्याखन तख अकिता बाल्नाकै म ट्याव हिसाबमा चाहिँ नगरपालिका सापारू गानु पेनु हाँ चाहिँ झि त्वाले त्वाले कलाकार पासापिन्दा सत अग्रज त्यता सत गुरु त्यता सत चाहिँ नगरपालिका छलफलजी चाहिँ थेथे भने मैले थुकाने यामाली धाइरे चाहिँ वेकअपसँग छलफल काठन चाहिँ भन्छ व्यवस्थापन बालाकै हिसाबमा चाहिँ यो दिउँदा तर व्यवस्थापन समिति हेराए चाहिँ थे या
4: नगरपालिका है झुल्का नगरपालिका है यही झुल्का वडा है यही झुल्का अलग समितिमा हो मस्या नगरपालिका या धासालाई अलग समिति नै छ्यामा ल नगरपालिका सेउ ख नगरपालिका ठिकै छु नि ठाउँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार संस्था त बने जिउ
3: खान
4: विभिन्न शिल्पकार जुन जिउ नागेज प्याखौँ ठिमी खोप यी गोल टोखा तथा म छिएटु होला सायद चिसो मस्युजी मेमे थाहा नदेफु होला गुट गर्न चर्चा उइछौँ म उइछौँ नदेफु ठाउँ पनि सामाजिक सञ्जाल होइन मन त्यसमा यो कोठा छुच्छु टुटे यो को सिका होला
3: होला
4: नक्सा आठ ठाउँ पनि सामाजिक सञ्जाल मर बोले नि जसै उल्म छिथासे लाखे त्यहाँ ढेगा म त्यसमा मस्यु
3: मस्यु
4: आलाई फुक्क ठ्याक गर्नु गर्नु छुच्छु टुटे एजिया चाहिँ थो विपिन शिल्पकार जुन यस छुदा छ नि खोपे चौँ नागे चप्याखौँ पुलाङ्गु खल कि छिमेमे ठ्याचौँ नागे चप्याखौँ सुइदु कि मरु पुलाङ्गु कठयौँ बाजयौँ बोल्यो आधारे मियु आधारे ताल्यु आधारे प्याखौँ आधारे पुलाङ्गु आधिकारिक फेर तका माने या फै अवस्था दुला
3: अन्यपछि चाहिँ अध्ययनै अम्म यहाँ
4: अध्ययनै मजुनिका ठो पक्ष चाहिँ अध्ययनै
3: मजुनि नेपाली यो चेसन देखते माल राल उसलेसम्म खेतने छि जुल मलाई चाहिँ नपा दौपट्टि अडेकते म ढ्याउपट्टि चाहिँ छेउ सोच चाहिँ त तर थो गुलिस चालेदेखि गनायोपट्टि पुलाङ नपा गनायाऊ छुयाऊ ढ्याउपट्टि चाहिँ छेसँग अड्डे नै म यहाँ छेसँग वस्याऊ यहाँ खाम हो तर उपत्यका चाहिँ विभिन्न थासे चाहिँ नागाचा प्याखन्दै वन नागाचा प्याखङ खेता चाहिँ विभिन्न नाम तै जस्तै थिमियाउ मेउजी तोख्याउ मेउजी बदमव्याउ मेउजी थास थासे थथौए नाम त्यास हुन्छ तर भक्तपुरे सिलसिला चाहिँ छुरा साथी वाकपति नारायण चाहिँ द्वयातान चाहिँ राधा कृष्ण याउपति नाच के न्यु डक वो हिसाब चाहिँ मेथ्या समस्या मेथ्या पुलाउन देफ तर जिता लगे जो छिथ्या चाहिँ वो हिसाब वाकपति नारायण ढ्याउ यो को पुलाउँ पति मन्दिर जु आना क्यों तौड्या हिसाब छिथ्यापति पुलाउँ जुला ढ्याउपति छौ सम्भावना
4: वाकपति नारायणले सम्बन्धित जुलका मकला
3: सम्बन्धित ठिहे चाहिँ अघे ढ्याउ ठक्का चिस थकिन अध्ययन मरु मला तर वाकपति नारायण डेया तानन चाहिँ चाहिँ छुपुर्ने खुनु खला एकादशी खुनु खला चोछ्या पति छौ नागाचा प्याखण्ड अन्त चाहिँ गुठी संस्थान हे चाहिँ ठिभा बियता तौ गुठी संस्थान हे जने जो चौँ वेक अनि वेक पिसन चाहिँ दाछिया छ दाछिया छक खला न्यापसोक खला अन केनेङ के मौड प्रदर्शन या मौड अथङ्क नै वन प्रदर्शन जुला मजुला जुता चाहिँ ठ्याक्क यादमा तर मजुत हौ पति
4: चाहिँ च्यान्जोको प्याउ यो खला कि मेरो प्याउ
3: छिसन थो विशेष के नौ चाहिँ फेज ल
4: मेब्लेन सरकार तुन खेले रङशाला वा
3: ढासँग
4: बिजिनी थियो काइ
3: पारिश्रमिक भाषा भाषा चाहिँ बिउ
4: खासे व्यक्ति थन जस्तै यहीँ चौम सु व्यक्ति तिमी के ढास उनी खला
3: पासा पनि सल्लाह अनुसार समय भ्याज दर हाल्छ साँच्ची भन्यो अघि पारिश्रमिक
4: सुनानो सहयोग या चाहजुल लासा छिपिन त छिपिनी प्याखण्ड सहयोग या चाहजुल लासा छिपीसँग वेक अप पनि इच्छा पुरा या त चाहिँ सु बाधा अवरोध मरु
3: अनि अपति चाहिँ मरु त्यसमा स्वागत है वेक अप पनि
4: थाना जिल्ला छ अनि भामा पाखे चाहिँ छौ छोछ छौ नि सत्तै जुटका छिट गणन आइ पाखे चाबेले पाखे गर्न छिपिङ त सत लाग्छ छिपिङ चाहिँ
3: समय अनुकूल समय मिले जस्तो हाल्दछ त्यसमा वेको पनि अफर त त्यसमा स्वीकार्य
4: अहिले अब उकै लागि घुम पनि वे माथि मरु
3: मरु मरु
4: मेब्लेन जु
3: मेब्लेन जु
4: उकै लागि छिपिङ टिम चाहिँ समूह चाहिँ तयारी
3: तयारी जे माला अहिले चाहिँ समय लाग्के माला वो हिसाब चाहिँ वे
4: यिन को छैन अनि त्यो आ छिपिनी थुक्सी तयारी छुदु गठेदु आ गुलबुजे वा छिपिनी प्याखौसले त गन वसा चाहिँ सुदै बालक मुखला आज भिडियो काइपिङ फिल्म पास पिनदु मुखला थन मिडिया आइपी पास पिन छन यहाँ बिउ गुलबुजे गन वा सवेर कारण यहाँ चौन दिउ मुखला श्याम था लगायत मुखला विकास चित्रकार लगायत पि पास पिङ मुखला जात्रा मात्रै प्याखौ चाहिँ खिचे आइपी आ गन वसा गुले वा खिचे यादै कहाँ यहाँ चौन दु काट्दै दिस
3: नाचाजिन तयार थिएन पूर्णिमा जुल पूर्णिमा साथी खुनु चाहिँ सापारो जुल सापारो साथी खुनु सुन्ने रहे सुन्ने आओ साथी खुनु रिसिन छिसन सुडियाउजी लगभग छ बजे छि थान प्यानेउजी अहिले छ बजे प्यानेउजी नच तयार नजिन दर्शक त गना गना पाना आना नाचेसन रेकेउजी
4: एपनी माउगा
3: पानी
4: छिपनी प्याखन पुछ चाहिँ
3: पर्न पुछ हुनि थाना किन ब्याख
4: पर्न किन लि पना कथन किन बिगा ढल कि पर्न
3: थाना छिसम प्रदर्शन
4: त्यो बापटे छिपनी सँग छु यो
3: अनि
4: त के पुकायो यो छु
3: छु मरो खाली

आयोजक दिदी बहिनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नम्बर 9857 3001।

0: समयको ख्याल राखौं। 7 बज्यो।
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन्। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो।

ढाकर बोकी बोकी करुणी का बथान आए ढाकर बोकी बोकी ठीठाहरू नाचन रामाय मादली ठोके ठोके ठीठाहरू नाचन रामाय मादली ठोके ठोके धान खुबाला झूल्यो हजुर देश।

समय को भले फरिया रातो चोलो ठमा रे समय को भले फरिया रातो चोलो ठमा हमें सिक्री करना पुली सिरमा सिरफुल झमा हमें सिक्री करना पुली सिरमा सिरफुल झमा धन को बाला चूल्यो हजुर बिसे रमाइलो हे धन को बाला चूल्यो हजुर बिसे रमाइलो।

पानी जीवन को आधार हो तर स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को आधार। हिमालयज अन टप लामटांग हिमाल को स्वच्छ प्राकृतिक पानी अब तपाई को हाथ में। अंतरराष्ट्रीय स्तर को अत्याधुनिक प्रविधि प्रशोधित अन टप ब्रांड का पानी 500 देखि 900 मिलीलीटर का आकर्षक पेट बोतल उपलब्ध छ। थप जानकारी का लागि हिमालयज स्प्रिंग वाटर प्राली नया बानेश्वर काठमांडू फोन 4781171 4780724 व हिमालयजवाटर.com.np लॉगिन गर्नुहोस्।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।